हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी प्यारे दोस्तों को और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM सो 100.7। दोस्तों और आपके साथ हिंदी के खंड पे फिर एक बार आप सभी के साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वेली। और दोस्तों आप सभी कैसे हैं? कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई? और यस आप सभी ठीक ठाक होंगे। और सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और आप सभी अपने अपने कामों में लग चुके होंगे, जाने के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुके होंगे और आप शायद रास्ते पर जा रहे होंगे अपने काम करने के जगह पर। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, सही सलामत पहुंचना, सही सलामत जाना। दोस्तों हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी कठिनाई ना आए। यस और हम हाजिर हैं आप सभी के लिए हिंदी के खंड पे, आप सभी का मनोरंजन करने के लिए, आपको हिंदी के बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सुनाने के लिए। दोस्तों और मेरे साथ दोबारा प्यार भरे हिंदी के गीतों में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। यस आरजे वीले के साथ आज हम दोबारा वक्त बिताएंगे पूरे 3 बजे तक दोस्तों। और हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करेंगे और बिताएंगे दोस्तों। यस जब भी आपको मौका मिलेगा हमें संदेश भेजना, आप सभी का इंतजार रहेगा दोस्तों FM से 100.7 पर। यस और आप सभी ने बहुत ही मुस्कुराहट के साथ, सुंदर सा, यस एक खूबसूरत सा मुस्कुराहट के साथ आप सभी ने अपने दिन की शुरुआत की होगी। यस आप कभी मत भूलना कि हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें एक नया दिन, नया समय मिल जाता है हमें। तो आइए इस खुश नसीबी को दोस्तों भरपूर एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ। ठीक है तो चलिए इस खंड का सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के आवाज में गाया गीत तेरे हवाले कर दिया। मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यस शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत तेरे हवाले कर दिया यस आप सभी को पसंद आया होगा। यस हमारे पास दोस्तों पूरे आधे घंटे का समय है यस और मुझे आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतज़ार है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप सभी ने आज का जो दिन है दोस्तों, आप सभी ने अच्छे से बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की होगी यस। अपने सारे गमों को, दुख को भूल जाइए दोस्तों, जो हो गया सो हो गया, आगे की तरफ हमें सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, है ना दोस्तों यस। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी अरिजीत सिंह के ही आवाज में गाया गीत नैना यस। और इस गीत के सुनाने से पहले आपके संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी और

yasma muni te vikung te ya mengmoi te ya ngak te pa bil ko thlir or elzet sailo te kachian pa zamate or durgesh ji ki taraf se bhi sandesh no oh he to mere liye nahi hai shayad sandesh aaya hai or Zama ka sandesh sabse pehla is khand mein mere liye pahuncha hai to main inka sandesh mein padhna chahungi aur kal ke liye bhi main unko unse main bahut khush hu Zama se ki wo humse milne aaye yahan par mujhe bahut acha laga unke pyar ke liye yes is main chahti hu ki is tarah hamari dosti hamesha barqarar rahe yes Or Zama likhte hain ki yes Archival Irondu di le thei don mo kapan lom tak wo interesel na chatak ne a twang tak ai duty thei nan le mahun lo om se tora po kwano mal som na le om puina du om tak itin itan zel thei na du sakna itan khla na che I play le sami zong zong kha duty puinen in tan le zoram remoy fm sa o inga le tu te tan po o archival duty no am le rontiani kalom to go zam chutyang pokin ke pon du sakna sang ber kalhan mol mol cheni ti khamilo cha sakla ti chuan min du sak zyate ka soi seng lo o chan ale or nuam hun nuam do ilo mang zel don ne o zam nang po chuan ya za sai lo hian morning aron tia ole good morning o aljet sailo nang po o good morning le o chwa ningai thadu zong zong te po ka good morning veku o chwan hak te pa yan arjun vi namaste yes aap ko bhi namaste hak te pa ila play le tur kha omega sang te ya ming moi te ya good boy jinal zama itan kalane aron ti a yes chwan ming moi te ya kan char le lokang banel namaste duty no am le ron ti a yes thank you so much bahut bahut shukriya aapko bhi ming moi te o aur main chahti hu ki aapka din acche se bite hamare sath yes aur kung te hi energy mom vel bo into I ur on len hun ni veto nemin kan kung te he tsuk tsari don lo nemin kan zama lo leng si ai u kalau tirang o it afan don lo abu hai lutuk tsuan ka status po en man lo abu hai lutuk mahmuni hian arjo vl kati tur chul ang te kati zauta so ei thengin I om lo laia re le I om lo laia ler tepo an omania karon report se lang ron tia ole ron report te o kachit sak lut tuk o ma hun ole to chaliye is tarah hum dher sari baatein karenge karte jayenge aur hame aapke pyare प्यारे प्यारे प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों तो आइए अगर आपको भी हमसे इस तरह बातें करनी है तो आप बेशक कर सकते हैं हमें संदेश भेज सकते हैं यस एफएम से 100.7 पर आप सभी प्यारे श्रोताओं का इंतजार रहता है दोस्तों यस आपके साथ हिंदी के खंड पे जुड़ी है आप सभी के लिए आपकी दोस्त आरजेवीएली और कभी भी अपने आप को अकेलापन मत सोचना क्योंकि आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आपसे बातें करने के लिए आपको खुश करने के लिए दोस्तों एफएम 100.7 हमेशा आपका साथ देगी ठीक है तो चलिए नैना अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम

Well, दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाया गीत यस नैना आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। यस, अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और यस, आप सभी को अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाया गीत जो नैना आपको सुनाया था मेरे दोस्तों, आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और यस, कभी कभी हम ढेर सारी ख्वाहिशें करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, मतलब ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम ढेर सारी ख्वाहिशें सोचते हैं, करते हैं, लेकिन अपने ही दोस्त, अपने ही वाले उन सभी ख्वाहिशों को मिटा देते हैं तो दिल बहुत दुखी होता है। यस, क्या करें, ज़िंदगी है। तो ऐसा सिचुएशन कभी कभी आता है और चले जाता है दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बस आगे की तरफ देखते रहें और पीछे की तरफ ना मुड़े दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में गाया गीत ज़िंदगी कुछ तो पता, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अरिजीत सिंह नहीं दोस्तों, जुबिन नौटियाल की आवाज में गाया गीत आप सभी को जिंदगी कुछ तो बता जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। कभी कभी हम जिंदगी से सवाल करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा सवाल होता है कि वो हमें किस मोड़ पर ले आते हैं और उनका क्या मकसद होता है, जिंदगी का क्या मकसद होता है, ये सब करके, ये सब दिखा के अच्छे इंसान से मिलाते हैं, बुरे इंसान से मिलाते हैं, है ना दोस्तों। कभी कभी दिल में डाउट होता है कि जिंदगी हमें क्या सिखाना चाहती है, लेकिन पॉजिटिव वे से देखेंगे तो जिंदगी एक हमें कुछ सीख सिखाती है, सिखाने के लिए कोशिश कर रही है कि हमें खुद को समझे, खुद को पहचाने दोस्तों। तो चलिए बाला सुब्रमण्यम की आवाज में गाया गीत सुनते हैं आते जाते, मेरी तरफ से इस खंड का अगला गीत आप सभी के नाम।

यस दस अभी बचने वाले नहीं है और तो मैंने सुबह से अभी कुछ खाया नहीं है, तो आप सभी ने ब्रेकफास्ट कर ली होगी और यस खाना भी खा लिया होगा. यस तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि आज का दिन हम सभी के लिए अच्छे से बीते. यस और हम आपको हमेशा यस याद करते हैं, और स्पेशली एफएम लिसनर्स वालों को तो हम हमेशा याद करते हैं. तो चलिए मेरे साथ अपने सारे गमों को दुखों को भूल जाते हैं, मतलब सुनते हैं अगला गीत, ये दिल क्या करे. बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से, और यस स्पेशली हमारे दोस्त जो जिन्होंने मुझे संदेश भेजे, मामुनी कुंगते या मिंग मोइते या नागते पा बिल्कुल एलजत साइलो, और मेरे दोस्त हजाम के लिए ये अगला गीत मैं पेश करना चाहती हूँ, और सुनते हैं दोस्तों आप सभी के नाम.

Well, दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को दिल क्या करे गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों. यस, ये दिल क्या करे. तो क्या करना है दिल का, जो चाहते हैं, जो दिल चाहता है उसी की तरफ जाओ. यस, लेकिन कभी कभी हमें दिल को कंट्रोल करना चाहिए, है ना दोस्तों. यस, कभी कभी दिल को संभालना जरूरी है. ठीक है, जो दिल चाहता है वो सब कुछ करना जरूरत नहीं होता है, और कुछ अच्छा होता है करने में और कुछ अच्छा नहीं होता है. इसलिए हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो दिल को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिए. ठीक है. तो चलिए सुनते हैं रात लंबियां मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जुबिन नौटियाल और आशीष कौर के आवाज में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत रात लंबिया, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस यस, तो मैं इस गीत को ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी दोस्तों। इस गीत को हम सभी पसंद करते हैं, राता लंबिया, और मेरे दोस्त अजामो को भी ये गीत बहुत ही पसंद है। तो अब मैं प्यार भरा, यस प्यार भरे, प्यार भरा प्यार भरे एक ही समान है गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, और मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने खंड को लेकर, हिंदी के खंड को लेकर दोस्तों। आपकी RJVLE दोबारा हाजिर होगी 11:20 यानी 11:20 पर। दोस्तों सुनते रहना FM 100.7 दोस्तों, जब भी आपको मौका मिलेगा हमें संदेश भेजिएगा, हमें इंतजार रहता है आपके प्यार भरे संदेश होगा दोस्तों, ठीक है। कुंते या ना जमो वीएलिन तो असहिले तो तक अनि मो तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और यस, आप सभी अपने अपने कामों में लग चुके होंगे और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 दोस्तों। और यस, हिंदी के खंड पे फिर एक बार आप सभी के लिए हाजिर है आप सभी की दोस्त RJ वियली। यस, और हमें आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा दोबारा दोस्तों। और आप सभी का आज के हमारे दूसरे खंड पे यस स्वागत करते हैं दोस्तों। चलिए आप सभी मेरे साथ हिंदी के बहुत ही खूबसूरत संगीत की दुनिया में मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। आप सभी सुन रहे हैं मेरे साथ FM 100.7 दोस्तों। तो आइए इस खंड की शुरुआत करते हैं। और आप सभी का समय दिन अच्छे से बीत रहा होगा। तो आपके दिन और समय को और भी ताजा और खुशियां और एक्साइटमेंट से चलिए भर देते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। सुकून मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस खंड का सबसे पहला गीत सुकून, यस, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आप सभी से ये एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी से मोहब्बत, प्यार, इश्क हुआ तो दोस्तों, मतलब ये एहसास करने के लिए, ये महसूस करने के लिए कोशिश कीजिए कि उस इंसान के साथ आप सुकून पा रहे हैं या सुकून मतलब है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, यस। तो चलिए, मतलब हमें जानने का ये हक बनता है कि वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क सच्चा है या बुरा। ठीक है, इसलिए हमेशा होशियारी के साथ रहना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान, कोई भी बुरा इंसान आपके दिलों से खेल कर चले जाए। ठीक है, और दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आप ही किसी के दिल से खेल कर चले जाए। ठीक है, दिल दिल होता है, दिल बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। तो आप मतलब जानने के लिए कोशिश कीजिए कि वो उस इंसान के साथ आपको सुकून मिल रहा है या नहीं। ठीक है, यस। तो चलिए, अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गीत, समझावा, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाया गीत समझावा आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। यस, प्यार अक्सर एक दूसरे को हम समझाते हैं कि ये सही है, वो सही है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन क्या करें, कोई मतलब वो दिल जिसे हम बेहद मोहब्बत करते हैं वो मानता ही नहीं। तो ऐसे दिल मतलब जो हमारी बातों को ना माने, हमारी बातों को कदर ना करे, उस दिल को ना दोस्तों छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। यस, और ये ज़रूरत नहीं है कि इश्क में, मोहब्बत में एक दूसरे को समझाते रहे। प्यार खुद ब खुद संभल जाता है और सब कुछ समझता है दोस्तों, ठीक है। प्यार में समझाने का मतलब कोई ऐसा मतलब ज़रूरत नहीं होती है, है ना दोस्तों। तो चलिए, अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, अरिजीत सिंह के ही आवाज़ में गाया गीत चन्ना मेरे यहाँ। यस, और यहाँ पर एजसाइलोहियान सुकून कंग चुआन मो ललवान का मिथा आ इलो ओम हाल छी नरोंदियानी अके मांगोय गोय तो तरो अले चुआन जेल जामा मेरे दोस्त की तरफ से संदेश आया है। इस मैं आ गलो इन रिपोर्ट जो आए ओ कहला दू एम एम सुकून ला मंग इन इला चन जुई कवन दू तक इजाई ती ले तुर जोंग जोंग खाई दूती ऑफिसर दान ले जरम रिमो एफ एम सो ओई गाई लतू ते तान पो तीन अपुआंग दू मैं मैं लविन अरुन त्यानी कच्छियान बा जाम ते यान अले जाम तुई देव इन नालो थोक जेरो ओ इफेल सी इरिल रू छसी इमेल पो छा इफ्रेश बॉक्सी सी लीरी नी खाओ चुआन चुआन नंग मा अंगा छियान छा के नई चे ही के इन छुआंग खोवेल ही अम्मा के नी तरो छियान छा ते छियान छलो ते कन्हन तोंग ले नोप नोप नूप नूप अमी ओ कन्हन तोंग ले नूप नूप छी ओ कन तोंग ले लोप लोप जेला चुआन

te hian levan kabula tle role fel mm angela tan taron ti bokani ole tu de lo in kom zero o mm shin nun hi zo a aboi tha ka ni hi tro zam eto boi tha ka ti lo anuam ka ti Yes, तो चलिए सुनते हैं जन्ना मेरे या अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए

अरिजीत सिंह के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से कि जिसको चले जाना है ना उनको जाने दीजिए, उन्हें रोकिए मत नहीं दोस्तों। प्यार मोहब्बत एक मतलब जबरदस्ती चीज नहीं है, ठीक है, कि उनको रोक के उन्हें मतलब क्या करें, मतलब कैसे कहें, कैसे बताऊं मैं आपको मतलब कि जबरदस्ती चीज नहीं है मोहब्बत। इंती लुई थे लाओ मो। तो जिसको जाना है उन्हें जाने दीजिए। अकल तोड़ देखा कल तीर मई तोड़ मो, कल लियाम तीर मई तोड़ चल खा अंगाई वेल लो नी मो जिससे हमें हमसे मोहब्बत है ना दोस्तों, वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। जो हमें छोड़ के जाते हैं ना इसका मतलब है कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करते, ठीक है। ये भी आप मतलब आप ही जानते होंगे और आप इसे ध्यान से दोबारा सोचिएगा, ठीक है। यस, तो मोहब्बत में किसी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। जिसे जाना है उन्हें जाने दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, मोहब्बत दिल का सुकून। यस, मोहब्बत दिल का सुकून। मोहब्बत एक दिल का सुकून है। अगर आपको उस इंसान से, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको सुकून नहीं मिला मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो मोहब्बत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यस, तो चलिए सुनते हैं मोहब्बत दिल का सुकून आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आतिफ असलम की आवाज में गाया गीत तेरे संग यारा आप सभी को पसंद आया होगा। अच्छे इंसान के साथ जब हम रहते हैं तो अच्छा लगता है उनके साथ रहना, है ना दोस्तों? और चलिए, हमारा हमारा समय भी बीतता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और आप सभी को एक गीत के साथ अलविदा कहने का फिर से दोबारा समय आ चुका है। और शायद आप सभी अपने अपने कामों में बिजी होंगे। और जाते जाते दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपकी दोस्त आरजे वियली आप सभी से कहना चाहती है कि मतलब आपकी दोस्त आरजे वियली के पास बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसके अंदर प्यार बरसा हुआ है आपके लिए, ठीक है? सबके लिए, आपके लिए प्यार बरसा हुआ है और प्यार है दोस्तों। लेकिन लेकिन दोस्तों कि जाते जाते दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि प्यार कोई खेल नहीं है दोस्तों। प्यार कोई खेल नहीं है, प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज है जो सभी के लिए बना हुआ है, ठीक है? अगर आप जिस इंसान से प्यार नहीं करते ना, मतलब दिखावे से, मतलब किसी से प्यार मत कीजिए, ठीक है? आप पहले सोचिए, मतलब सोचिए उसके बारे में कि उस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, करता हूँ, ये सब चीजें पहले सोच लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप किसी का, मतलब दिल दुखा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आप सभी किसी का दिल मत दुखाइए और मैं नहीं चाहती कि आप किसी का दिल दुखाए। हमेशा प्यार एक दूसरे के साथ बरसाते रहे और दोस्तों, कभी भी मुखौटा पहन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मतलब क्योंकि वो रिटर्न आता है, ठीक है? जिस तरह हम किसी के साथ बर्ताव करते हैं ना, वही बर्ताव हमारे पर आता है, ठीक है? तो चलिए, ऐसा इंसिडेंस आपके साथ ना हो, इसलिए आप होशियार से रहिए और सच्चा वाला प्यार सभी से करिए, ठीक है? तो चलिए, इश्क वाला लव, इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और मिलते हैं दोस्तों 2:35 पर। मैं वापस आऊंगी आप सभी से मिलने के लिए। 2:35

पर ओ आज हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं दोस्तों, तो चलिए इस तरह ढेर सारी बातें होती रहेगी, तो याद रखना जो मैंने कहा है आप सभी से, ठीक है? बस मतलब एक बात याद रखना हमेशा कि प्यार कोई खेल नहीं होता है। आप किसी के दिल से मत खेलिए, आप किसी के प्यार से मत खेलिए, सच्चा वाला प्यार सभी से करिएगा। किसी से आप अगर प्यार करते हैं तो सच्चा वाला प्यार, ओनली सच्चा वाला प्यार आप करिएगा, ठीक है? तो ये इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को. और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7. दोस्तों, और आपके साथ हिंदी के खंड पे फिर एक बार हाजिर है आप सभी की दोस्त RJ वियली. और दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और आप सभी का दिन कैसे बीता, हमें जानना है. क्या आप हमें अपने संदेश के जरिए बता सकेंगे कि आपका दिन कैसे गुजरा, आप सभी ने कैसे बिताया आज का दिन. हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत ही अच्छे से, खुशियाँ और आनंद से बीता होगा, है ना दोस्तों? यस, अगर नहीं बीता तो अभी मतलब देर नहीं है. आप कोशिश कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम भी अपने आज के इस आखिरी खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ. और हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे पेश किए गए गीत, इस खंड का गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगे दोस्तों. तो चलिए.

मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को इस खंड का सबसे पहला गीत, यस दिल दिया गल्ला। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। तो चलिए पेश करती हूँ आप सभी के लिए, आतिफ असलम की आवाज में गाया गीत है। तो आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा। तो ये इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये गीत दिल दिया गल्ला आतिफ असलम की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी सोनू निगम की आवाज़ में गाया गीत मैं हूं ना। यस, और मैं हूं ना गीत सुनाने से पहले यहाँ पर वी कुंगते अहियान अजय मोवियल नेक्स्ट खा प्राइमरी चैनल लमा ड्यूटी उथनी साइलौता नो रोनती यानी ओ अवन लोमोम तक एम ओ कुंगते फेल छीन ले भाई इसी खानी इन ब्याग लग लो लाइ खान कलो तुबुआई पर सेवा सॉरी तो पो।

马西嘿，我一拨人脸别痛啊！我一直跟弟弟对了，独家跟弟弟啊，走提楼你，跟弟弟别很帅，别没了穿哦。嗯，那是你跟啊，啊，主打来跟那是别当钱呀，都让我。等等，跟那跟是楼没样子。तो चलिए फिलहाल सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से कुंगतिया के लिए और उन्होंने डेडिकेट किया है उंगूरी यस के लिए ये गीत मैं हूं ना आप सभी के लिए मेरी तरफ से

यस, तो हम भी कहते हैं आपसे कि हम है ना दोस्तों आप सभी के लिए. यस, अगर आपको किसी से बातें करनी है तो आप हमसे कर सकते हैं दोस्तों. अगर कोई आपसे बातें नहीं करना चाहते तो आप हमसे कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा यस FM सो 100.7 पर आपका इंतज़ार करते हैं. आपसे बातें करने के लिए हमें मन करता है दोस्तों. यस, तो अगर आपको मतलब आपके पास वक्त होगा हमसे बातें करने के लिए तो तुरंत FM सो 100.7 को ऑन कीजिए और हमें सुनिए और हमें संदेश भेजिए, ठीक है दोस्तों. अब हम अगला गीत सुनाने से पहले मेरे दोस्त जिलाजाम की तरफ से संदेश आया है. जाम है ना जो वील गुड आफ्टरनून अरुंतिया ओ जाम नंग पोले ओ वील वो इनता ना इस सिग्नेचर म्यूजिक नु नुंग बेरंग खा गलो अहुन ले तदेर मया अवा अवा खम ओम लव सी एम तक तक मो जाम कबन ओय लव तक तक ना कफियाम तो नी खा रा तकिन हो से ओ नुंग लम मि नहीं यांगिन फिल्म खोल ले हंसे नेक्स्ट सॉन्ग इतान सवरंती नी तेरे में जाम फिल्म खुरंगाई मोटर खल ना ओ मोटर कन खल पोहियन कन फिल्म खुरंगाई या चुतियांग बोकिन कन शिंग नुन मन ना आ पोहियन कन फिल्म खुर ही अंगाई ज्वाल तक जितनी ती ही ओ हंसे थर ले ज्वाल ताइला तेरो गन सवाई हियान मंगई न कोंग आते मंगई लो न कोंग आते ओ कोंग एंग के माहियन कन फिल्म खुर ही अलोंगाई तक जितनी तेरो जाम सा कोंग ते हियन उथनी नेन चान मिन रेल चियांग मैया रोन दिया रेल लवे चंचिन कन सोई चर चर रेल चु कन रेल लो जे मासे चंचिन कन सोई चर चर ओले तो चलिए सुनते हैं इस खंड का दूसरा गीत मेरी तरफ से. चुरा लिया है तुमने शान और का याग्निक की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी आप सभी के प्यार और प्यार भरे संदेश के जरिए दोस्त संदेश के कारण दोस्तों। यस, आप सभी ने अपने कीमती वक्त निकाल के हमें संदेश भेज

जहाँ और यस हम बहुत खुश नसीब है, और मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ दोस्तों कि आपको मतलब आपसे हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन मैं ये जाते जाते कहना चाहूँगी कि अगर हम एक दूसरे से प्यार दोस्ती का दोस्ती वाला भी हो या कोई भी वाला मतलब रिश्ता हो, वो सच्चा होना चाहिए, है ना दोस्तों? यस कन रिलेशनशिप का इंतिन पन लव इन इन इन मा इला मो इंतिना छियानते छियानांग ते पन लव इन इन मा इला मासे कन इन ए हे कन इन कार कन इन जोम नखा एंगे दो निलविन अतक तुरनी ती ही ओ लोशे थर ले ताइला दरोजाम कसोई दिगिन ती एम कुंते छियानी गोम ना ते पो हे फाकर बीक ते फाकर लो बीक ते आओम थे नहीं सुमो दिखलाओ तका तितु तितु देखा चु अंतुआर जेल दोन मो काका चु कंशेबे कनी तेरा ओ चु बांग चुआन ते दिखलाओ तू आ खान चन लाओ शाम का कन तुम छे वांगा ठीक है, और किसी का दिल दुखाना नहीं है। यस ये हमेशा याद रखना। ओले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे एफएम जो 100.7 पर। मैं कह नहीं सकती कि हम कब दोबारा मिलेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द ही दोबारा आप सभी से एफएम जो 100.7 पर मुलाकात हो दोस्तों। और यहाँ पर मैं जाते जाते एक संदेश पढ़ना चाहूँगी कि ओके ओके वाल हने नेट्री मैसेज कर दूंगा आर जे वी एल जा मंगे के मामिन जो कर रंदिया कंगाई वेक से ओ ओ कंगाई वेक से ओ कंगाई लु वेक से ओ चुआन कुंगते या नंग मानियन कनिन मो तो थू ते इसो यम ते रंदिया सोई चिया गे कुंगते इन फेल वेक इन क्या ना ओमते नंग मानी बियाकते ही आजा जाए नि सोई दिखे रंदिया नि कुंगते या नि ए तरो के सोई दिख ती पो कैं शिया लो चुवांगिन अगर मतलब कोई भी जो रिश्ता हम किसी से निभाते हैं वो सच्चा होना चाहिए, ठीक है? चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार का हो, भाई बहन का हो, है ना दोस्तों? तो चलिए, उम्मीद है आप सभी ने आज का दिन अच्छे से बिताया होगा। तो अब आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। क्या करें दोस्तों, समय को हम नहीं रोक सकते। यस मासे कुंगते बुइन चुका वुई वे देव वुई निकलो दिउती तोता कचोला ट्रंग खान मासे कऊ ही रोन लंग लो रे रेगा ओ चुबांग चुआन उनका फेवरेट सॉन्ग यस मन पसंदी गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। तू जो मिला गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आजकल मेरे यस कऊ उछी पिया आजकल बहुत बिजी है शायद। ओ अबुआई थे लुत्तु का अबुआई लाई तक नहीं इनके शायद तुन लाए चू। ओ हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं। कुंते लो शिलेंगे रो ओ तो उनके बिना एफ एम जो ओ भी अधूरा है, कुंते के बिना एफ एम जो ओ अधूरा है, मेरे दोस्त जाम के बिना अधूरा है, और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के बिना ये एफ एम जो ओ अधूरा है दोस्तों। तो हमेशा इंतजार रहेगा, तब तक के लिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे, ठीक है? आप सभी अपना ख्याल रखना। आरजे विल की तरफ से बाय बाय, टेक केयर बेकू ओ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी है।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डेर खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया। इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजराक की और दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत ने वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में है। अफगानिस्तान के कुनार खोस और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के हिंसक

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

हेलो नमस्कार, आधार आभार, आप सभी का स्वागत करती हूँ FM जो वॉइस ऑफ द सेल्फ साथ पर। बुधवार की शाम है और इस सुनहरी शाम में मैं आई हूँ आरजे अमोईतेई आपकी शाम में और भी रौनक लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस खन्ने में लाई हूँ तीन एकल गीत जो कि शब्बीर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद अजीज इन तीनों के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत आपको सुनाने। पहला गीत जो आप सुन रहे हैं शब्बीर कुमार के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में है, हैया हो। चलिए इस गीत के साथ अपनी शाम की शुरुआत करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, गीत आप सुन रहे हैं या हो शब्बीर कुमार के आवाज में, और ये है फिल्म कब तक चुप रहूंगी फिल्म का है ये, जो कि 1988 का। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत के संदेश आने लगे हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला संदेश आया हितेंद्र दास के तरफ से। हितेंद्र दास, बहुत दिनों के बाद आपसे बातें हुई, हमें भी बहुत बहुत ही अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून आरजे जी, गुड आफ्टरनून। चलिए इस गीत को भी इनके ही नाम कर लेते हैं हम, और वी कुंगते और कनबोस लौलुता अर्जुन सुमिन तीनू उसे लोइन लाख नुला वे नाक लाइन कदमे जानिन सुई रन लाइफ डोन लो निमो ते ओ जानिन सुन या तेरो लाइफ लो जान लो दिले लो बॉक्स या तेरो विकुंग ते कलोम लुट तुके। आपका संदेश मिला हमें, और यहाँ पे मेंगमोइते है वो भी लिखते हमें, नमस्ते ड्यूटी नुआमले मेंगमोइते जानिन सु कन छेंग स्लेंग सतरो कन लथुल खुंग ते पोखा कन लसजेल तुरंग आयंग प्ले जेल तुरंग आयंग। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, आशा भोसले अपनी बहुत बहुत ही सुंदर प्यारी आवाज में गाने वाली है आ जाने जा।

जी दोस्तों, जब तक गीत चलता है हम आशा भोसले के बारे में आपको जरा सा बताना चाहेंगे। 1938 सितंबर को उनका जन्म हुआ था और संगली में, और उनकी देहांत हुई थी 12 अप्रैल 2026 को। इस साल अप्रैल 12 को उनकी देहांत हो गई, जिसमें वो थी 92 इयर्स की। आशा भोसले जो कि हमारी इंडियन प्लेबैक सिंगर है, एक्ट्रेस भी है और इंडियन सिनेमा में काम करती है, और बहुत बहुत बहुत ही उनकी आवाज़ों की तारीफ की जाती थी। बहुत ही फेमस थी अपने ज़माने में और उन्होंने बहुत कई सारे अवार्ड्स भी जीते थे। अनारते मैंने आशा भोसले के पर ओही कदू ए मैं नानी पर नहीं नत कर रही। हमको उम्मीद है आपको भी जरूर पसंद आई होगी इनकी आवाज। चलिए भागते पाबील कुतीर की तरफ से संदेश आया है, कहते आर जे प्ले ले तू कभी कुंते आ मोरी साइलो ओमेगा सांगते आ कहलाने अरोन तेरी अब हन लो हम ठीक तक ओ भागते पाबील कुतीर पो हुन मिन रन मन पुई कब हन लोम ठीन तक एम। हमको उम्मीद है आपका ये संदेश हमारे खंड के आखिरी खंड तक और इस ट्रांसमिशन के आखिरी खंड तक भी हमें मिले। और अगला संदेश आया है जिलजामा की तरफ से, लिखते हैं तुंगे तुंगे ओ तिरो कबन से गाय लो एम गाय तुजी गन मिशिया कन ओम एम कन ओम एम ले ओ रन तिवेल दुआ जिलजामा मो मिन से लो नीचो तुम्हार अनशिलसु जानिन कथराव थो दान जिरिन कर रोहिन लार जे उसे वांगते खाई थराव खलो थोक जेल रो से ओ इधूले रन श्रांग दोन निया। अगला गीत जो मैं आपको पेश करने जा रही हूँ मोहम्मद अजीज के बहुत बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में, नखरे वाली। नखरे वाली ती चो हिंदी चो आनिन ती तव शात ती ना ओ मीचिया ती तव शात तक ब्यांग ती तव शात तक खालो नहीं बे ब्यांग चू। तो इस मामले में ही ये गीत सुनते हैं।

कुमार जो है एक भारतीय पार्श्व गायक है, जिसे कहते हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर, जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे मोहम्मद रफ़ी के अनुकरणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने 1980 के दशक में कई हिट गाने भी गाए थे। तो इनका जन्म है हुआ था 26 अक्टूबर 1954 को। इनका पूरा नाम है शब्बीर शेख। बहुत सारे हिट गाने गाए थे इन्होंने, जैसे कि तेरी मेहरबानियाँ, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, बनी रे मेरी बिटिया, सो गया ये जहाँ, दीदे मो, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों दिखा खाते पोखा सकनिया, मुझे पीने का शौक नहीं, दीदे मो, ला इंग मुसा थे लो थुन वे तो नी लो सवे तो नी हित लोम हित तम तक पो आओ मनी। तो चलिए दोस्तों, अगला गीत सुनाऊंगी मैं आपको आशा भोसले की बहुत बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में, हुस्न के लाख रंग, लामंग और वालिन।

हुस्न के लाखों रंग आशा भोसले की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में है। तो आप सुन रहे एफएम जो 107.7, मैं हूँ आपकी आरजे अमोईतेई और इस खान के लिए आपसे विदा लेती हूँ। हम वापस आएंगे 6:40 में बहुत ही सुंदर फिल्मी गीतों के साथ। अब से थोड़ी देर बाद आप वक्त बिताएंगे अपने आरजे रोसांग के साथ वेस्टर्न म्यूजिक सुनने। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते एक और गीत मोहम्मद अजीज के आवाज में, लड़का में गरीब। हेलो सुन ले पाए खा लो तो छम देगा। और चलो चुपचान सुनिए। चलिए आपसे विदा देंगे इस गीत के साथ, मैं आपसे विदा लेती हूँ इस खंड के लिए, लड़का में गरीब।

हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस एफएम 100.7 पर। ये है मैं हूँ आपके आरजे अमोईते। ये मेरा दूसरा खंड है और इसमें मैं आपको सुनाने वाली हूँ दो फिल्मों के गीत, चांद सा रोशन चेहरा और जाने होगा क्या। तो चलिए दोस्तों, पहला गीत मैं आपको सुना रही हूँ, चांद सा रोशन चेहरा फिल्म का गीत है ये। आगे आगे चाहत चली।

个地呢，对的人都会做到呢哦。给包个老婆的兵帮到呢，为公爹还没立爹黑，阿明啊杀得了对老太了，的接着了多杀的看着了呢，杀得了突然很爱泼没了，而杀哦，因爹爹而对杀的帮你提下的了，那那帮阿鲁杀的不看你别提头啊。तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 7:10 से 7:45 आप सुनने वाले स्पेशल स्पेशल सीरीज बाय एनएसडी आकाशवाणी ऑन 12 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये प्रोग्राम आप सुनने वाले हैं 7:10 to 7:45 और उसके बाद हम वापस आएंगे 8:02 में अपने चॉइस के गीत आपको सुनाने। दारिया के बीच खानिन का चॉइस दिखा कर उन गई थकती ले दोन से नीचू। तो इसी बीच आप सुने जाने होगा क्या फिल्म का गीत है बेचैनिया बर्लिन। कहीं मत जाएगा ट्यून में रहेगा। आरजी अमोई 23 खान के लिए आपसे अलविदा लेती है इस गीत के साथ।

तो दोस्तों गीत सुन रहे थे आप, जाने होगा क्या फिल्म का गीत, बेचैनियां बढ़ने लगी है। दुर्गेश नगनपुरे के तरफ से संदेश, गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। और दुर्गेश, हमें उम्मीद है कि आखिरी खंड तक आप भी हमारे साथ होंगे। चलिए दोस्तों, एक और गीत आपको सुनाऊंगी, जाने होगा कि इसी फिल्म का एक और गीत, दिल धक धक करने लगा। दिल कब धक धक करता है? इंतिकांगे लुंगफू, इंतिकांगे लुंगफू ही रंथिन तो ये मनी छेदे अच्छे दो कदियो छेला उदे हन मुहियान इंगे छेदे कन मुहियान इंगे ते तुवेल तेरा। तो चलिए, दिल बहुत जोरों से धड़क उठा है, जब धड़कने लगता है जब हम किसी को किसी ऐसे किसी को देखते हैं जो हमारी धड़कनों को तेज करता है। सुबह सही वक्त नहीं नाम लवे तेरा। तो चलिए, जाने होगा क्या फिल्म का गीत है ये। जी सर, हमने कहा था कि 10:30 बजे 7:10 से आप सुनेंगे स्पेशल सीरीज बाय NSD आकाशवाणी 12 Years of Government।

स्वागत है आप सभी का एफएम जवाई 100.7 पर। मैं हूं आपके आजा मोइते, तीसरी खंड में आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हां दोस्तों, मैंने जिस तरह से पहले कहा था कि ये जो खंड है हमारा, मैं इसमें अपने पसंदीदा गीत आपको सुनाने वाली हूं। पहला गीत तो आप सुन ही रहे हैं, हमको हमी से।

तो कैसा लगा आपको जरूर बता दीजिएगा हमें अपने संदेशों के द्वारा कि आपको अपने आरजे की चॉइस का गीत कैसा लगा। बढ़ते अगले गीत की ओर। ए आर रहमान के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में है, जो कि मुझे भी बहुत बहुत ही पसंद है, ये गीत तू ही दे।

बॉम्बे मूवी का मूवी का ये गीत है तू ही रे ए आर रहमान हरिहरन, कविता कृष्णा मूर्ति की आवाजों में। कैसा लगा आपको आज का जो आपकी आरजे की चॉइस का गीत है कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। अतंगलम तिरु दूसरी रातों की तुलना में तो आज की रात में जो मेरा प्लेलिस्ट है वो बहुत बहुत ही अलग है मैं जानती हूँ। और ओमेगा सांते लिखते है न्यात्रो तू नारजे चोर नित्य निचत्रो चोर মা মুদিরাম নথামে লিখতে আর জামাই তে কালাম রেগনিয়া কা মান বের বর্ত নাম তো যেতিয়া কান ছেং ছাউলে চার চার গান মিলম তো মা মুনি রন্দং বে তো আ তো আগলা গীত মে আপকে সুনানে যা রহি হু লকি ফিল্ম কা গীত হে জো কি মুঝে বহুত বহুত হি পসন্দ হে থোড়া সা কুল ওয়ালা গীত সুনাউঙ্গি লেকিন হ্যাঁ বহুত হি সুন্দর হে ইসকি গ্যারান্টি দেতি হু চলিয়ে সুন জরা

हेना सुंदर दोसो लकी फिल्म का गीत है सुन जरा संग तुनु पे जो मेल ट्राई ने मीट में मोइरा अब तक इन मुदो नी जो ना फिल्म का लो एन वेरु ओ लकी फिल्म का गीत है इन लो सलमान खान ते चंदा खानिया। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हमारे अगले गीत की ओर। वीर फिल्म का गीत सुनाऊंगी जो कि मुझे बहुत बहुत ही पसंद है, सुरीली अखियों वाली मीट में मोइ तक मैं अनिया छास्ते खमियन फकना लाखानिया। चलिए हम और आप हम सभी के नाम करती हूँ इस गीत को। माथुआ मिशन बैंक ने संदेश दिया है मामूनी लौलन हित सुन कतुई लौजे तिलंग मामून मक्षीन तेरो यान मोई रिंग चुंगपन अमी रोन लम छुक मे असि लो चुंग पे मी पही लो सई ले रिंग थ्री न तिरो मक्षीन ले मे ओ तो चले द सई जो की थे विकुंग ते ते मा मुनी ते मा तुंग मिशन बे के तरफ से ओके।

वीर फिल्म का गीत है ये, सुरीली अखियों वाले। जरीन खान है इसमें, सलमान खान और मिथिन चक्रवर्ती डायरेक्टर है अनिल शर्मा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर से। पहले अलदिनपुया फल कौन बेंगला की तरफ से संदेश आया है, तब तक इस स्पीच आप सुनिएगा इस गीत को। खामी और शिया फिल्म का गीत सुना रहे हैं तो हर लम्हा, और इसके अंतर्गत गीत आपके संदेश की ओर ध्यान देना चाहूंगी। अलदिनपुया फल कौन बेंगला लिखते हैं हमें अर्जी प्ले ले तुखा नंगमा ता ले लौंगाई थसो वे जोंग जोंग ता ने अर्जी जोंग जोंग ता ने कथियन ते वेंग संग संग मी ते तान पापारी पु तान कुंग ते तान मिंग मोई ते के वाला तुई कुआला नो के वाला तुई कुआला तुई कुआला मी तान छियाली तो रही गाय दिन पर ये जो गीत है मैं आपके और जिन जिन जनों के नाम लिखे किए हैं आपने उन सभी के नाम करना चाहूंगी, और जितने भी आर्जे हमें इस वक्त सुन रहे हैं आप सभी के नाम किए हैं। तो चलिए हम सब के नाम है ये गीत खामोशी फिल्म का गीत तो हर लम्हा।

omega sang te bilik te he soi thui lo mai play le tur khai tan le khak te pu bi bil kho thir ta na ron ti ni बहुत बहुत शुक्रिया ओमेगा, ये जो गीत है वो भी हम आपके नाम करना चाहेंगे। तो हमारे जाने का वक्त अभी आ गया है, आपसे थोड़ी देर बाद आप अपना वक्त बिताएंगे अपनी आरजे मिकी के साथ, बहुत बहुत ही सुंदर गीत के साथ वो वापस आने वाले हैं और हम आपके साथ हमारी फिर से बातचीत होगी 9:30 बजे, कहीं बच जाएगा ट्यून में रही।

क्योंकि बहुत ही सुंदर गीतों के साथ हम वापस आने वाले हैं। अगला गीत जो मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, श्रेया घोषल की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में है। ये जहर फिल्म का गीत है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दूंगी मैं। नंग नंग ही नहीं थी इलंग कने ना क्या गई ओमा नंग कलो नहीं चे नी चुआन है को बेली कल सनंग इतान कथा मकंग तीना चो क्यों। तो चलिए दोस्तों, ये जो गीत है मैं उन सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम करना चाहूंगी जो जिसके लिए वो एक दूसरे का पूरा जिंदगी, अपना पूरा जिंदगी जो है एक दूसरे के नाम करते हैं, दुनिया को छोड़ने का अपमान करते हैं।

नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का FM जो 100.7 पर। मैं हूँ आपकी आरजे मोहिती। अपनी आखिरी खंड में सभी सभी का स्वागत करती हूँ तीन फिल्मी गीतों के साथ। चलिए दोस्तों, इस खंड में मैं सुनाने वाली हूँ आपको नमस्ते लंदन, हर दिल जो प्यार करेगा और आशिक बनाया आपने फिल्मों के गीत। तो पहला गीत जो आप सुन रहे हैं नमस्ते लंदन फिल्म का गीत है मैं जहाँ रहूँ, राहत फतेह अली खान और कृष्णा के आवाजों में।

तो दोस्तों कहते हैं ना कि हम दुनिया में कहीं भी कहीं पे भी सफर क्यों ना करें, अपना घर तो अपना घर होता है, अपना देश तो अपना देश होता है ना। कोई मुना पो मिला मानी खुआ ले तुई मानी खुआ मानी बेंग मानी रम हिचु मानी तांगेंगे लोग ने चीन नित्रो। तो दोस्तों ये है नमस्ते लंदन फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और करिश्मा के आवाजों में। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ तेरी याद हमेशा आती है। हमको उम्मीद है आप सभी को जरूर जरूर पसंद आया होगा। ओमेगा सांगते का संदेश आया है, हम उन्हें जरूर जरूर पढ़ना चाहेंगे। इन्होंने लिखा है अमोते खोवेला कोम वे अनिति पो इशात लो अंतिंगे योम वे ती चु कसे रंगने हो ओमेगा रियांग वन रायरा वाल हियान रिसेल था इन इजेल थे नान दो सकना कहलान चे मुत्तुई मंग था रंते अब हंथुम वोंग वोंग तक एम जानिन चुक मुत्थी अतुई दो नीति ही कछियांग तोप ओमेगा पोचुतियांग बोकिन ओ अमुत खा लो तुई एम एम मई से तेरो जानिन चु chuanin agla sunday she din pui a hianin kaminga ron haya ka chiar dung emaw nakina ka chiarang o har dil jo pyar karega film ka title song hai।

तो दोस्तों आप गीत सुन रहे हैं हर दिल जो प्यार करेगा। जी हाँ, कहते हैं ना कि हर वो दिल जो प्यार करेगा उसे कभी ना कभी तो रोना होगा, कभी तो हंसना होगा। अनि तिरु मंगई ना लुंग लियम जोंग जोंग ते ना कन मबाक चु अचांग ले नुई अचांग ले ट्रा खानी मे तिरु खामि चुंग चांग खानी हे लाही रोमांटिक अनि तिरु मेंग मोइ ते तिरु अदिकेम या आ मोइ ते इतान ले ओमेगा सांग ते तान रोन ती नि ओमेगा तान पो खान रोन थान सकनी छु मंग मे ते अगति मेंग मोइ ते वन स्वीट टीन बेंग बेंग तक एम chuanin ye sunday she o mare ma ane na tangin miss kalo ngai tha o miss mut pa in kalo ngai tha e arantia van lo om tak em meo tiang khanin min lo men pui ve ze la tiro heavy kan transmission top thing hiani min lo ngai tha kren kan be se ni om chuanin agla gi jo me apko sunane ja rahi hu ye he आशिक बनाया आपने फिल्म का गीत है ये। चले इस गीत के टाइटल सॉन्ग से शुरुआत करते हैं इस फिल्म के।

हेना तो सुंदर ये गीत दोस्तों आशिक बनाया आपने इस आपने आशिकी के आशिकी में पूरा डूब गया है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। बहुत ही प्यारा गीत सुनाऊंगी फिर से जुबिन गर्ग और अलीशा चिनॉय के बहुत बहुत ही सुंदर आवाजों में है ये गीत दिलरुबा और हाँ फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन। और ललदीन पुयफल को ने जो संदेश दिया था हमें हम उन्हें पढ़ ही लेते हैं। तिपल तिसोल पल्पमानी से इप्ले ले तुर्खा नंग माता ने लोंगाय थबे जोंग जोंग तान ले अर्दे जोंग जोंग तान ले कठ्यां ते बेंग शंग शंग मी ते तान रंदे निदिन पुयफल कोन बेंग लाई हानिन अच्छा ते मुन शंग शंग रा तो ना मिल लोंगाय थतु जोंग जोंग ते तान खान रंद खान सका चुआनिन ओ मुझे लगता है इस वक्त कोई तो ऐसे होंगे जो सफर में होंगे रास्ते में होंगे। आप सभी सभी के नाम करना चाहूंगी जिन पा जिन वे पापा फिर गैठा के चुप चलो नमदानी तंग दाये नी चौने टैक्सी आते चौन और अस्पताल में भी होंगे तो न दम लो नत न कुमा मोजों सों देखा इन सवाई तान करों थंग बोका कन सेगमेंट ला जों सों ते ही और उम्मीद करती हूँ।

कि आप जल्द ही जल्द स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अपने घर जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लौट चले। तो चलिए दोस्तों, ये गीत आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारे ये दोनों गीत? एक है नमस्ते लंदन फिल्म का दिल रुबा, और दूसरा है हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का गीत साहिबा साहिबा। सलमान खान ने चले मैं थे ही कत्तिलु तो कमो कैरेक्टर ही जो। और कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा हर दिल जो प्यार करेगा। मुनम मुनम बन तो फी नि मई हुनिनला इंगलोगे इतिकाय मनी हुनिन नि हुना चन एन बेंगे ये रु मोरी सेलार ख्यांग तेरे कनवा हनिन तोंग खात वे तेरो इ प्लेलिस्ट ते मे सार जगे थाक अनवाम अमन लाले थिन ले ओ थिन ते तके एंग पो चुनी से इ प्ले ले तु जोंग जोंग ते जो ओ एफएम गाइ थ तु जोंग जोंग ते तान कहलान वेके अरोंती आ चोन hei poimo tuang takin ho la tuang taka in ru din nu in nuam thleng turin du sang sang ber kala na che goodbye bye le rantia avahan lobom thin tak e Maurice nang po dam takin lo om la chuanin china tui takin lo mudon ni o। तो दोस्तों, आज की रात जो हमें सुन रहे हैं आप सभी, सभी के नाम है ये गीत जो सुनाने जा रही हूँ। ये है हमारा फिल्म आशिक बनाया आपने का। तो आपकी कशिश, आपकी अर्जिया मोहिते आपसे विदा लेती है इस गीत के साथ। हमारी और आपकी फिर से कब मुलाकात हो, कब बातें हो, इसका तो सिर्फ भगवान को ही पता है। इसलिए अपना स्वस्थ, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हम और आप हमारी और आपकी फिर से जल्द ही जल्द बातें होगी। तो जाने से पहले आप सभी के नाम इस गीत को अर्पित करना चाहूंगी। शुभरात्रि।